0: फायदे किसा फ्लेक्सिप प्रोग्राम सामने कग्र किसा सिलाइन बारो हा कतर्ण हायु हा कतर्णी जतनी सिलई कचुग तीसानी बागे तई पदरे पद बेमानी यानी कतिर बागे गवर्नमेंट अफ इंडिया एवं भारत हापा इंद्रधनुष मिशन दिखलैक्या अबंखा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जे पी नाड्डा दिखलैक्या अबंखा इंग्रेजी विषि नईसाई चिब्री डिसेम्बर तालनी साल नीबानी साल अब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बखाती दिखलाई जाखा अब मिशन अंखा इंद्रधनुष अब सूचीर मानी सामू बतांग सामू बतांग इंग्रेजी विषि नईसाई चीचार विशिंगन चेराई रोगनी पदरे पद बेमानी आगनी कतरे तीसानी बागैन और सामू बतांग यागो खाने हार जाखा पैला डिसेम्बर तालनी साल नईचीबा इंग्रेजी विशिंगे नईसाई चिब्रे और सामू बतांग सजाखा विषि नईचि नई उमर विशिंगी जत चेराई रग्न तई सागनांग अंगनाई बुमा रग्न एबा अग चेराई गनांग बरग्न पदरे पद एबा दाले दाल बेमार रग्नि याकाग्रनानि बागै सुचिरनानि चेंग जाखा इंग्रेजी बिसि नैसाय चुकु निसिमि चिथाम ओ सुचिरमानि जे सामंबता आबहंगाखाय नैसाय नैचिन निबिसिंनि बिसिंतैन जे बर रग रोजाखा अ हास्ते रगंखा इउपी तई हरियाणा रग अब रोजाखा तई अबहंगाखे रां पैसा नाङियावैन अ सेप रग मानै दङ अबन कारीब अर रोजाग पलिय' हेपाटाइटिस बि निमोनिया मेनिनजाइटिस तई हिमोफिलियास अमहाय गोबां मा दङ तेबो दङ इनफ्लुएन्जा टाइप बि मिसेल्स रुबेला जापानिस एनकेफालाइटिस रोटा भाइरास ताबुक साग जरा भारत हा कतरनि जत हास्ते रगन अ सामू बतांग नाहारे दंजाग भारत हा कतरनि लगे लगे न चीनी अ हास्ते अब अ सामू बतांग चेंगै रोजाखा तई ताबग चेंगजागै दङ अशोक जरा चें खोनालायखा फ्लेगशिप प्रोग्राम ताबग खोनालायनो साग हामग्रायनि कग्र खोनायथाव नायलाय
1: रांजाखनि थाखो बखो दिनै सामक्राइनि कग साइनासाइटिस बेमार नरगै जों कक थाइसा थाइनै खोनालायनो साइनास एबा साइनासाइटिस आबो जोंनि बुकुंनि बेमार बुकुंनि गानागिनिनि जे बेकरें रग दङ आबुनि गोजारो तुमुं गोजारो केबेंमुं नुक जाखा होनके इंगिया खेबा

0: भारत हापांगनि बोखाखतै खा खामा फुनुकना व काटारो थांगानो मन्त्री अक्रा प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा तिनि उदयपुर गोमती हांकरनि चुकुचि थाम रोजाक नैचि ब्रै राजहायरांनि हामक्राय गोनां सामुंबोतां कायचिन' चेंगिरिवानो ते कुनालाकायानो आबनि बागै उदयपुर नायकल संनि तियार ओंमानि सामुं चलिबै दंखा उदयपुरनि राजर्षि कलाक्षेत्रव जुगाजि रिजाक मेल' तिनि साखाम रों थोंमुं अल कामि हामक्राय ते तां नायखुंनखबै जतै कायचि तांबोतांन' चेंगै रोनानि ते कुनालाकायनानि ककतंगु मेल' हास्तेनि रांमन्त्री प्रनजित सिन्हाराय सिख्लाते थंमन्त्री टिंकु राय तै एमएलए अभिषेक देवराय आकर्षण मानजागानो मन्त्री अक्रा प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा मिया थुयाम बाजि गोनां डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी आगरतला सिभिल साखाम नग्न चेंगिरिखा आगरतला आउलि तै आबुनि गानागिनि आमचाइनि लुकुरकनि थानि साखामनि सेबसाब तुनै रिथानि अ साखाम नग सामुं काहाम तांगानो होनै ब खा खालायमानि कक साखा महारानी तुलसीबती ब्रैरकनि रोंनकनि नख्लाव संसारजाक मेल कायसाव ब साखा अ साखाम नग्न सानजाफ्रु ओपिडि सेबसाब तंगानो पाइलट प्रजेक्टखिनि अ साखाम नग्न चेंगिरिजाखा अ मडेल काहामखे जासारिमानखे कुबुनि कायचि चुकु आउलि मथावब अमतै चेतन नाहार जागानो पान्डाव कुबुनि बिसिंग मानजाखा एमएलए दीपक मजुमदार डेपुटी मेयर मनिका दास दत्त आकर्षण आगरतला पुर नायख्रायनि वार्ड कायचिसा नम्बर आमचाइनि अभयनगर हाथीब तांगजागै तंनाय लेक तांगबोतांनि सामुं बेराय नायखा आगरतला आउलि नायख्रायनि मेयर दीपक मजुमदार बसाखा हास्ते हापांनि नाहारमुं कतर ओंखा लुकुरकनि हामक्रायते कोतालकुक बेखरेप्स नामनानि आबुनि बागै रांखक ब्रै रोजाक सोबाय जागानो बतै बसाखा बोसकां सालकिसानि बिसिंगन अभयनगर हाथीनि लेक तांगबोतांन' चेंगै रोवानो मन्त्री अक्रा प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा मेयरनि लगेव तंखा आमचाइनि कर्परेटर ते मेयर इन काउन्सिल हिरालाल देवनाथ ते कुबुनि अफिसार रक केन्द्रनि सिख्लातै थों नायखुं मेरा युव भारतनि सेब्बाय हाखतर गोनांगै नेशा मुक्ति युव फर विकसित भारत सामुंबोतांनि ते कायसा बातायलायमुं चेंगै रेखा अ बातायलायमुं बिसिचि मानिसिमि नैचिबा उमरनि सिख्ला सिख्लि रकनि बागै फियगजाक नंगानो बातायलायमुंग मानजाक नाव हिन्दी इंराजी एबा जेसा आमचाइनि ककबाय गोरोंगै मानानो बातायलायमुं कायथाम बेरेम ओंगानो केन्द्रनि ककचंलायनक साखा माइ भारत पोर्टाल तिनि निसिमि रेजिस्ट्रेशन चेंजागानो कलम्बियानि बुकारामांगाव संसारजाक फिल बाचिदक हायुं बेरेमनि फिजिक्स अलम्पियाड नै साय नैचिदक पान्डानि पाइथागो भारतनि खरगबास रोंनाय रक रांसाकनि सकात मानखा बरकंखा पुणेनि कनिष्ठ जैन इन्दुरनि रिद्देश अनन्त वेन्दाले दिल्ली कोतालनि ऋषित गार्ग मुम्बाइनि श्रेष्ठ सुरैया ते अहमदाबादनि शरीर जोशी केन्द्रनि पारमाणविक फानबाबाइनि तांक्रा डक्टर अजित कुमार महन्ती सकात मान्नाय रक्न खा काहाम याफारका पुलिस तै टीएसआरनि कोथाजाक रुतुक मुंबाय मिया मनु थानानि लम्बाबिल आमचायाव खरकनि सिख्लानि थानि गोबांमा फेगजाखनाय मानै मानखा पुलिस सदर नायखं साखा सिख्ला रकनि थानि जि साया बा टेब्लेट रुतुगुइ मानखा मानमारि अ फेगजाखनाय मानैनि हातिव रांमारि ओंखा खकसि रासायरां अ पाटिमुंग मनु थानव एनडिपिएस केरंग मामला नाहारजाखा त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन बाय नायकलजाक अरनि सेकेन्ड डिभिसन लीग फुटबल बातायलायमुंग मिया निसिमि आगरतलाव चेंजाखा उमाकान्त मिनि स्टेडियामाव संसारजाक चेंजाकमानि थोंमाव विवेकानन्द क्लाब गोप्लाय ओंखा विवेकानन्द कायथाम कायसा गलनि फेरबाय बीरेन्द्र क्लाबनो मेचेनखा अथोंमुंग चेंगिरेखा अथोंमुंगन' चेंगिरेखा एमपि राजीव भट्टाचार्य बेबागै बदल कायचुकुनतै सिंगल लीग नो रुगिन' चेम्पियनशिप ककचं जागानो तबुक नबरतिबनि ककतुमा मुस्कां दाम नैचि ब्रैयो हास्तेनि कायबा हांकर' फेरांककै गोबां वातै वावै मानहनि हजाक मुंरेखा नबरतिबा नायखं तिनि सालनि साखानि तुंमारि थामचिनै डिग्री ते खामानि तुंमारि नैचिदक डिग्री सेल्सियासनि गानागिनि तंगै मानो तिनि आइजोगो खामानि तुंमारि तंमानि नैचिबा दशमिक नै डिग्री सेल्सियास फुंनि दाम बातामै सति थामचि जरा वातै बाखा चार दशमिक ब्रै डिग्री मिलिमिटार ककब्रक बाय ककतुमा परिमुं तबुक जराती अरन' पाइखा उल्लि ककतुमा आवाय ओंगानो सानजा दामसिनि तामै सति ब्रैजिबाव
1: নমস্কার, শুভ সকাল শ্রোতা বন্ধু। শুরু করে দিলাম আজকের অভিজ্ঞাপনের পর্ব। আমি চিত্রলেখা ঘোষ রয়েছে আপনাদের সঙ্গে, আর আমার সঙ্গে রয়েছে
2: আমি অঙ্কিতা।

खाखलायो ताखक तेबो खुसं अनरखना बायखिना और चाबंग रखनै ताबोसिन स्टुडियो ने जरा खग तामुइ तंगो दिबोनी दिबोनी तखिनि माया फुंदि बरहाय टाइमखा फुंनि 11टा तामुइ 33 मिनिट ते 15 सेकेंड हिनि मानो दाम चिसा तामुइ सति थामचि थामते मुखफ्लि नै चिसा गे ताखक तेबो खुसं नंनि रचामुनि कयमु आं नारा खरि तंगो एसएमएस नि थ्रु एबा एसएमएस ते बिसिंतै खनातक साक बायखना नंनि जे कयमु रक ताबक तो खरक्सा ताखक नि सिमि सप्लाय खायखौ ताखक ब्रजेस नि हाबनि आंलो तां नंनि रचामु खारि तंगो न हंगे ताबक ते तांसर रचामु खनारि बानो हंगे थाचिं जे ताखक खरक्सा बिसराय नि जादनि रचामु खाना हिनि कयमानि हंगे आम तो खरां आचमन स्पेक्स लाउड टकङै थांबा हंगे जों बिनि रचामु तंग हाइबानो तिनि खना लायग्राया खदो हंगे ते गुबुननि सार लग जों खना लायानो हंगे फैदि अजराव ते तांस रचामु जों खनाबानो नरक मेसेज हरै नंनो कयमु याफारफानो आं तिनि प्लेयर खाइमे एखनो तिनि खारो ता खेखलाय जारि ता खक ते बुखुक सं आं जसं मानसा जाय दो गुइ दङ नंनि रचामु न आं नारांनानि एबा खनारिनानि तम आनि याफाव तंखांके बा आं आनि थानियो खनारि माना मतन खे आं नंनो खनायनाय आंखौ मुचुं सब समयनो जे नंनि रचामु एबा नरक खनाथक सं रचामु नरक खनाथुं एबा नंनो खनारि मानातैनि बाखैनो आं फायोबा हंखे फायदे अजरावो ता खुग जुलाइबे बेखौ उसानि नायसिङै दं अरजाबुंनो खोनालायानो अबाबो आसोग लेम्बङिया आसोग लाउड बङिया

आव जों डिस्ट्रप्शन बने रुजाम खनालाया न तामनि हिंगा के किसिसा टेक्निकल प्रब्लेम मान बांगे आव मारे किसिं जों दे बर' रक लुकुरा आसके जों जा रक लायजा थांना फायनानि दे चाना नंनानि बेलाय न बिया रक लायजा हानि बांगै न हानि बांगै न आं कनानि मुचुंगो जों मथा खानानि रक एबा हास्ते हाफांनि बर' रक जों सिनि जे जागाओ फ्लाड ओंजाग एबा लामा हामियांगै दङ नगनि कुतुलमायां दङ बरंनो थांगै नाय जुबानानि ओंथुं दे आबनो कारिब जों सालायानो ओ यांनि जों बाहायखे काटुयमान दिनै ओ वेदारनि दै दे गोबां मानो दिग्ला रिजाक बोसखांनि सालग बाहायनो टेब वाटि वानानि हिनै हानि बांगै जों टेब दिनै लुकुर जोंजार कलायमानो आव मारे किचिं हारि हिंगे जों दाबो रुचामुं तांजा खानावनालायानो आमनि उलत जों कलाम खानलायानो

0: बादल से छम छम शराब बरसे,
1: सांवरी घटा से शराब बरसे,
0: बूंदों की बजी पायल।

0: अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे। लगता था ऐसे ही चलेगा, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी। आयुष्मान वह वंदना कार्ड से आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर-19 और अंडर-23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है।

0: आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,000

0: हजार 418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
1: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
2: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: नागालैंड के चुमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपिन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ

0: गरीबों की जाय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।